0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: শুনছেন নমস্কার কলকাতা,
2: নমস্কার কলকাতা
1: 107 FM রেইনবোতে, নমস্কার কলকাতা,
2: নমস্কার কলকাতা।

0: रुको नहीं बेटी, नाचो नाचो।
1: नीर भरत जमुना तट पर जब भर भर नीर उठाई गगर, तब डगर चलत मोहे छेड़त लंगर, हट जाओ जी कुंवर फुट जात गगर, मोहे छोड़ छोड़ माधव माधव माधव, मोहे छोड़ छोड़ माधव माधव माधव, मोहे छोड़ छोड़ माधव माधव।

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: सुप्रभात, नमस्कार एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता और उस कोलकाता के द रियल रेडियो 107 एफएम रेनबो पर ढेर सारा प्यार और अपनेपन के साथ हाजिर है आपकी आशी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत, जो तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती है, खैर मकदम करती है, वेलकम करती है उसी कार्यक्रम में जिसे वो अपने अंदाज में कहती है म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम। जी हाँ, नॉन स्टॉप गपशप विद योर आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत। और जैसा कि आप जानते हैं कि हाँ, जब बातें होंगी तो कोई ना कोई अगर विषय हो ना तो फिर डायरेक्शन मिल जाता है और बातें करने में भी मज़ा आता है। तो चलिए मैं बता दूँ, आज जो है ना 12 जुलाई है और 12 जुलाई को विश्व स्तर पर हम मनाते हैं इंटरनेशनल होप डे। अब होप जो है ना वो हर इंसान के लिए ज़रूरी है। अगर मैं कहूँ कि हमारे सफलता का फाउंडेशन है होप, तो आप इस बात को ज़रूर मानेंगे, सहमत होंगे। क्यों, क्या कहते हैं, मानते हैं ना? तो चलिए इसी बात पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी ने आशा के महत्व को बड़े ही सुंदर और प्रेरणादायक शब्दों में व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है, आशा उत्साह की जननी है, आशा में तेज है, बल है, जीवन है, आशा ही संसार की संचालक शक्ति है।

इस खूबसूरत से मोटिवेशनल गीत को आपने सुना, इस म्यूजिकल ट्रैक को आपने सुना फ्रॉम द मूवी इकबाल, के और सलीम मोचन की आवाज में, लिरिसिस्ट इरफान सिद्दीकी, कंपोजर सलीम सुलेमान। और जब बात हो, और अगर मैं कहूं कि होप इज द की टू सक्सेस, तो ये गलत नहीं है। आपको बेहतर भविष्य की कल्पना करने की शक्ति देती है, जिससे आप विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते। यहां मतलब मैं कहूं अगर कि होप जो है ना, वो एक इंटरनल एनर्जी है हमारे, वो अंदरूनी पंख है जिससे हम उड़ान भरते हैं, सफलता की उड़ान भरते हैं और अपने सपनों को मुकम्मल करते हैं।

0: देखते हैं म्यूजिकली योर्स पे हमारे कौन से कॉलर फ्रेंड हाजिर हैं और कहां से कॉल किया है। हेलो हेलो
1: हेलो मैम, मैं अरविंद गिरी बोल रहा हूँ। मैं बैंगलोर से आपके कार्यक्रम में जुड़ रहा हूँ।
0: बैंगलोर से अरविंद गिरी, तो बहुत बहुत स्वागत है अरविंद गिरी आपका कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप में। और जैसा कि आप सुन रहे हैं, आपको पता ही है कि आज हमारा जो कार्यक्रम है नॉन स्टॉप गपशप, और उसमें जो विषय है वो है होप पावर पर, यानी कह सकते हैं कि पावर ऑफ होप पर, आशाओं पर हम बात कर रहे हैं। क्योंकि आशा जो है वो किसी के भी जीवन की सफलता में जो है वो फाउंडेशन के रूप में जो है माना जाता है। तो आपके क्या विचार हैं इस विषय से संबंधित?
1: सबसे पहले थैंक यू मैम कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ होप के अवसर पे आपके साथ विचार साझा करने का अवसर मिला। मेरे लिए बहुत खुशी और सम्मान की बात है कि मैं बैंगलोर से जुड़ रहा हूँ आपके साथ।
0: और हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि बैंगलोर और कोलकाता एक साथ जुड़े हैं 107 पर 7-7।
1: थैंक यू मैम, ये भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं होप को लेकर मैं यही बोल सकता हूँ कि होप एक पॉजिटिव सोच है जो हमें मुश्किल से मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। उम्मीद ही है तो हमें नए सवेरे नए सुबह देखने का मौका ही मिलता है। थैंक यू आज मुझे आपसे।
0: अच्छा सुनो, ये तो बताओ अरविंद, तुम पहली बार जुड़े हो तो ये बताओ कि तुम करते क्या हो?
1: मैम मैं वैसे तो बेसिकली यूपी से हूँ, बट मैं बैंगलोर में हूँ, मैं डिफेंस में जॉब करता हूँ।
0: चलिए ये बहुत अच्छी बात है। और मतलब संडे के दिन खास किस तरीके से आप संडे मनाते हो?
1: संडे तो हर ड्यूटी पर्सनल के लिए एक बहुत अच्छा दिन होता है। इस दिन तो हम अपनी नई सुबह की शुरुआत मतलब एक पॉजिटिव सोच के साथ ही करते हैं और एक पॉजिटिविटी के लिए तैयार भी रहते हैं। पूरे दिन स्पेंड कैसे करें, आज हमें एक मौका मिलता है कि हम अपनी फैमिली के साथ कहीं टाइम स्पेंड कर सकते हैं।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा कि आप जुड़े बैंगलोर से, तो थैंक्स अ लॉट अरविंद जुड़ने के लिए, और फिर समय मिले तो बिल्कुल जुड़िएगा।
1: थैंक यू मैम।
0: तो ऐसा है दोस्तों कि अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो डायल कीजिए 2243-7912। बाय द टाइम यू डायल द नंबर, मैं आपके लिए प्ले करती हूँ अगला ट्रैक।

ऐसा है दोस्तों कि आज हम बात कर रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप में द पावर ऑफ होप पर, क्योंकि आज 12th जुलाई है और 12th जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ होप। और ऐसे में बच्चों में होप डेवलप करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट? और इसे वे सीखेंगे कि कैसे मुश्किल समय में भी अच्छे दिन आने की उम्मीद रखना उन्हें खुशहाल और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। बच्चों को आशा का महत्व और अर्थ समझाने के लिए बहुत ही मतलब

0: स्टूडियो की घड़ी में समय उछला है 10:27 और फिलहाल आपने ट्यून कर रखा है 107 एफएम रेनबो यानी सिटी ऑफ जॉय कोलकाता का 107 एफएम रेनबो, जहां आप और हम जुड़ते हैं दिल से दिल तक, यानी कि हार्ट टू हार्ट हमारा कनेक्शन होता है और रहता है आपके साथ ये चैनल 24/7 ऑल डे ऑल नाइट। और फिलहाल देखते हैं कि हमारे साथ कौन जुड़े हैं, कहाँ से जुड़े हैं। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार,
0: कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं पीयूष कुमार बोल रहा हूँ, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ।
0: पीयूष कुमार कश्मीर से, तो चलिए ये बहुत अच्छी बात है, के फॉर कश्मीर और के फॉर कोलकाता और दोनों ही जुड़ रहे हैं 107 एफएम रेनबो पर। और जब सिटी ऑफ जॉय है तो जुड़ना तो बनता है। तो चलिए ये बताइए, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं और आज जो हमारा विषय है वो हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ होप पर, क्योंकि 12 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ होप। तो आपके क्या विचार हैं?
1: जी, बहुत आपने सही बात कहा, क्योंकि एक्चुअली जो ये होप जो है, आशा उम्मीद, जिसे आप जो भी अपने भाषा में बोले, ये हमें, जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, जितना मैं जानता हूँ कि हमारे जीवन में बहुत सारे असफलताएं आए, बहुत सारी कठिनाइयां आई, बहुत सारे दुर्भाग्यवश आप बोल सकते हैं कुछ रीजन के कारण नहीं होती है, लेकिन अंत समय में भी बहुत सारे असफलताओं के बाद एक किरण रहती है, नहीं चले इस बार तो हो ही जाएगी हमारी सक्सेस। तो एक टर्निंग पॉइंट होती है, जिस टर्निंग पॉइंट के बदौलत आज बहुत सारे बच्चों में एक ढाढ़स, एक उम्मीद बनी हुई रहती है कि नहीं, मैं अभी पीछे नहीं गिरा हूं, मुझे आगे जरूर जीवन में कभी ना कभी सफलता मिलेगी। तो होप जो है ना, ये एक तरह से कह सकते हैं कि कोई एक कल्पना भी नहीं है, ना ही कोई वो जादुई सोच है, ये एक
0: अंदरूनी शक्ति है।
1: हाँ, ये एक तरह की भावना है, मानसिकता है, एक विश्वास है।
0: बिल्कुल, क्या बात है।
1: कि कितनी भी असफलताएं आ जाए, कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, कोई भी दुर्भाग्य बस कुछ भी हो जाए, तो उसके परे भी कुछ होता है। और जब आप इस सोच से, एक ढाढ़स से रहते हो ना, तो एक पॉजिटिव एनर्जी वाइब्स आती है, और जब आप उस पॉजिटिव एनर्जी या वाइब से कुछ काम करते हैं ना, तो जरूर आप अपने आप को एक मुकाम पे पहुंचते हैं। बच्चों के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरे जूनियर्स हैं अभी, वो सब हमेशा सोचते हैं, थके हारे हुए रहते हैं कि सर अब कुछ नहीं हो सकता है, घर वाले से भी परेशान है, इवन बच्चे सुसाइडल पॉइंट तक भी चले जाते हैं, लेकिन उस सुसाइड पॉइंट के टाइम पे भी बच्चे ना कहीं उसको अगर एक भी आशा मिल जाती है ना, तो आप कह सकते हैं कि उसके जीवन में रस आ जाती है। फिर वो बच्चे जो काम करते हैं, और आप देखेंगे ऐसे ही बच्चे सफल भी होते हैं जिनके पास कोई ना कोई एक होप जिंदा है उनके अंदर में, कि मुझे किसी के लिए कुछ करना है,
0: अपने लिए करना है, देश के लिए करना है,
1: देश के लिए करना
0: और पूरे विश्व में भारत का परचम लहराना है ना?
1: जी जी जी।
0: वैसे
1: जी,
0: ये बताओ आप पढ़ाई क्या करते हो?
1: जी मैं एक्चुअली एग्रीकल्चर में हूँ, तो बेसिकली मेरी पौधे वौधे से बीमारी के रिलेटेड मेरे काम रहते हैं, मैं पीएचडी कर रहा हूँ।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छा लगा कि आप कश्मीर से जुड़े हैं, और यूं ही जब समय मिले, जाहिर सी बात है छुट्टी का दिन होगा तो जरूर आपको मौका मिलेगा कि आप जुड़ पाएं। वैसे भी आप पीएचडी वाले बहुत पढ़ाई करते हो, बहुत व्यस्त रहते हो, फिर भी अगर जुड़ते हो सिटी ऑफ जॉय कोलकाता के 107 के साथ, तो फिर बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप में जुड़ने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको।

0: चुटकी नुस्खे।
1: एक चुटकी नुस्खे। अब एक चुटकी नुस्खे में आज आपकी आरजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत क्या साझा करेगी। अच्छा, ऐसा है कि अब दिन को भी ध्यान में रखते हुए, एक तो आज संडे है और संडे को हम फंडे में तब्दील करने में माहिर होते हैं, और जब बात संडे की आती है, फंडे की बात आती है, तो पेट पूजा भी हम कुछ डबल ही कर लेते हैं। वैसे डबल करना सही नहीं है, लेकिन इन केस अगर कुछ ज़्यादा पेट पूजा हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे, पचाना भी तो पड़ेगा। तो भोजन के बाद बीट लीफ, पान के पत्ते चबाना जो है वो मतलब पाचन क्रिया को तेज करता है, सलाइवा बढ़ाता है और एंजाइम्स को सक्रिय करता है, जिससे भारी खाना आसानी से पचता है। ये एसिडिटी, ब्लोटिंग और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में प्राकृतिक उपाय की तरह काम करता है। पान के पत्ते से पाचन में जो बहुत सारे फायदे होते हैं, और अब क्या बताऊं, मतलब सादा पान खाओ, बीटल लीव लो, थोड़े से उसमें क्या कहते हैं उसे, सौंफ डालो, लौंग डालो, इलायची डालो और पान का बीरा मुंह में डालो, बस काम खत्म।
0: एक चुटकी नुस्खे।
1: अब ऐसा है कि संडे के दिन आई हूं तो ऐसे ही थोड़ी ना आऊंगी, आप सभी के लिए अगले म्यूजिकल ट्रैक के जरिए बहुत सारी चीजें लाई हूं, आप तक जैसे पहुंचेगा खाना शुरू कीजिए।

अभी जिस खूबसूरत से म्यूजिकल ट्रैक को आपने सुना म्यूजिकली योर्स पर, उसे हमने लिया था फिल्म रुस्तम से, गीतकार मनोज मुंतशिर, संगीतकार ओर्को और आवाज थी आतिफ असलम की। एंड द नेक्स्ट ट्रैक फॉर यू, अरिजीत सिंह की आवाज में, फिल्म जब हैरी मेट सेजल से, गीतकार इरशाद कामिल, संगीतकार प्रीतम।

0: आज के दिन
1: 12 जुलाई का दिन विश्व और भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस तारीख की सबसे प्रमुख घटनाओं में से वर्ष 2012 में पाकिस्तान की मानव अधिकार कार्यकर्ता मलाला यूसफाई जो हैं वो उनका जन्म दिन शामिल है। और ऐसा है कि इनके जन्मदिन को विश्व स्तर पर मलाला डे के रूप में मनाया जाता है। 12 जुलाई से जुड़ी अन्य प्रमुख जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उसके बारे में अगर आपसे साझा करूं तो बताना चाहूंगी कि 1949 में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस पर लगाए गए प्रतिबंध को कुछ शर्तों के साथ हटा लिया गया था। 1962 में 12 जुलाई को अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा प्रक्षेपित संचार उपग्रह टेलस्टार के माध्यम से पहला ट्रांस अटलांटिक टेलीविजन लाइव प्रसारण किया गया था। 1998 में 12 जुलाई को फ्रांस ने ब्राजील को 3-1 से हराकर पहली बार फीफा विश्व कप का खिताब जीता था। 2015 में 12 जुलाई को नासा के न्यू होराइजंस अंतरिक्ष यान ने पहली बार प्लूटो ग्रह के सबसे करीब पहुंचकर उसकी बेहद स्पष्ट तस्वीरें ली थी। और अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए आप सभी के लिए ये गीत।

चलिए दोस्तों, अब समय बहुत कम शेष बचा है हमारे और आपके बीच कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में। तो जाने से पहले कुछ आशा पर जो महान विचार है महान लोगों के, वो मैं आपसे जरूर साझा करना चाहूंगी। जैसे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़े, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चले, यदि आप चल नहीं सकते तो रेंगे, लेकिन आगे बढ़ना जारी रखें और कभी भी आशा ना छोड़ें। वहीं नेल्सन मंडेला ने क्या कहा है होप से संबंधित, आशा के सहारे ही सबसे अंधेरे दिनों में भी प्रकाश की किरणें देखी जा सकती हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कहा रिलेटेड टू होप, युवाओं को प्रेरित करते हुए वे हमेशा कहते हैं कि खुद पर विश्वास रखें और कर्म करते रहें, क्योंकि आशा और सकारात्मकता ऊर्जा ही असंभव को संभव बनाती है। और वहीं अगर बात करें फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी की, तो उन्होंने कहा है कि हमेशा सिखाया कि सत्य और अहिंसा पर अटूट विश्वास और आशा के साथ किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसी के साथ आप सभी के लिए द लास्ट सॉन्ग इन द प्रोग्राम नॉनस्टॉप गपशप, डियर जिंदगी से लव यू जिंदगी, जसलीन रॉयल की आवाज में। इस गीत को सुनते सुनते आज्ञा दीजिए अपनी आज ही फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत को, यही कहूंगी, चलते चलते स्वस्थ रहें, मस्त रहें और क्या, चारों तरफ खुशियों के फ्यूल बिखेरते रहें और आपका दिन मंगलमय हो।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: कालो जोई बांग्ला गानेर धारा छुए जाक मन, सुनछेन गांदोरिया 107 FM रेनबो ते। गांदोरिया गांदोरिया छुए जाक मन, छुए जाक मन।
2: गाने बाजुक ओनेर रेडियो सुनछो 107 FM रेनबो। सात सुरे सारा दिन, सात सुरे सारा दिन।
3: বিরতির পরে অর্থাৎ খবরের পরে আবার আমরা ফিরে এলাম। জয়শ্রী মুখোপাধ্যায় এবং রণজয় মুখোপাধ্যায় আমরা শুনব প্রমিতা মল্লিকের কণ্ঠে এই গানটি।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

गुड आफ्टरनून, नमस्कार और सभी का स्वागत है 107 FM रेनबो पर। दोस्तों, आपका दोस्त आरजे अंकित यहाँ पर हाजिर है कार्यक्रम लेके तीन का तड़का। जी हाँ दोस्तों, तीन का तड़का में मैं रहने वाला हूँ आप लोगों के साथ शाम तक, यानी शाम 4 बजे तक। और दोस्तों, धीरे धीरे जो है दोपहर ढलने लगी है, शाम आने लगी है, और तो शाम का मूड बनाने के लिए आपका दोस्त यहाँ पर है तीन का तड़का में लेकर धमाकेदार कुछ ट्रैक्स। जी हाँ दोस्तों, धमाकेदार यानी रॉकिंग ट्रैक्स होने वाले हैं, कूलेस्ट ट्रैक्स होने वाले हैं आज के इस कार्यक्रम में। चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ। और जैसे कि दोस्तों, आप हमारे बंधु हैं, आप हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, तो क्यों ना एक दोस्ती पर पहला गाना दिया जाए आप लोगों के लिए।

ये था कॉकटेल टू से दोस्तों, कविता सेठ और नीरज श्रीधर की आवाज में, प्रीतम चक्रवर्ती का संकेत देशाद कामिल के बोल। दोस्तों 14 को स्वच्छता कर्मचारियों का होगा सम्मान। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय 14 जुलाई को तीसरा नमस्ते दिवस मनाएगा। इस अवसर पर कोलकाता में मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जबकि देश भर के शहरी स्थानीय निकायों में भी स्वच्छता कर्मचारियों के सम्मान और कल्याण से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से मीका सिंह की आवाज में सुन रहे थे ट्रैक विशाल शेखर का कंपोजिशन, लिरिसिस्ट फराह खान, विशाल दत्तलानी और शेखर रवजियानी। भारत न्यूजीलैंड बन सकते हैं वैश्विक ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के पास बहुत कुछ ऐसा है जो दोनों को एक दूसरे का पूरक बनाता है और दोनों देश मिलकर एक वैश्विक ताकत बन सकते हैं। तीन देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड की यात्रा पर आए श्री मोदी ने यहां एक बिजनेस कार्यक्रम में दोनों देशों के उद्योग जगत की प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए यह कहा।

भले ही दोस्तों हम कभी कोई गुंडे बनना नहीं चाहते, लेकिन इस गाने में वाइब तो जरूर है दोस्तों। गुंडे का डायलर ट्रैक आप सुन रहे थे सुहाली सेन की आवाज में, सुहाल सेन का संगीत और अली अब्बास जफर के थे बोल। और दोस्तों अब मौसम के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि अगले 5 दिनों तक हो सकती है भारी बारिश। पश्चिम बंगाल में बारिश का दौर अभी थमने वाला नहीं है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र अलीपुर ने आज चेतावनी जारी करते हुए बताया कि कोलकाता और दक्षिण बंगाल के जिलों में अगले 4 से 5 दिनों तक बारिश हो सकती है। अनुकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण मानसून हवाएं बेहद सक्रिय हो गई, जिसमें राज्य में जल जमाव और बाढ़ जैसी स्थिति गंभीर हो सकती है।

फिल्म ये जवानी है दीवानी से मोहित चौहान की आवाज में आप सुन रहे थे ट्रैक प्रीतम का कमीशन अमिताभ भट्टाचार्य के बोल। और दोस्तों जो आज वीकेंड का प्लान बना रहे हैं, घूमने का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए एक थोड़ी सी जरूरी सूचना ये दे दूं कि आज 16 घंटे के लिए बंद रहेगा विद्यासागर सेतु। जी हाँ, विद्यासागर ब्रिज का मरम्मत कार्य एक के लिए बार फिर बंद किया जा रहा है। हुगली द्वितीय ब्रिज रविवार 12 जुलाई को 16 घंटे के लिए पूरी तरह बंद रहेगा। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ब्रिज और उससे जुड़ी सभी रैंप पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये थी सूचना आपके लिए।

फिल्म दबंग 2 से दोस्तों आप सुन रहे थे सोनू निगम तुलसी कुमार की आवाज में, ट्रैक साजिद वाजिद का कंपोजिशन इरफान कमाल के थे बोल। दोस्तों हम तो सभी जानते हैं शाहरुख खान कमाल के एक्टर है, लेकिन वो कमाल के डांसर भी है, क्या आप ये जानते हैं? आपने कभी उनका ऐसा कोई गाने का वीडियो देखा है? अगला जो दोस्तों मैं गाना सुनाने वाला हूँ उसमें आप शाहरुख खान का कमाल का डांस स्टेप्स देख पाएंगे। वैसे रेडियो में दोस्तों आपको मैं वीडियो तो नहीं दिखा सकता, लेकिन वो गाना आपको जरूर सुना सकता हूँ मैं। आइए सुनते हैं वो ट्रैक।

का कंपोजिशन गुलजार के थे बोल। और दोस्तों डूरंड कप ट्रॉफी टूर का शिलांग चरण को हरी झंडी। मेघालय सरकार के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री वेलदमी की शायला ने शनिवार को 135वीं डूरंड कप के ट्रॉफी टूर का शिलांग में स्वागत किया। फुटबॉल प्रेमी राज्य मेघालय में टूर्नामेंट की तीन प्रतिष्ठित ट्रॉफियां उस औपचारिक फ्लैग ऑफ समारोह के बाद पहुंची जिसे इस महीने की शुरुआत में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने हरी झंडी दिखाई थी।

0: फिल्म बोल बच्चन से दोस्तों हिमेश रेशमिया श्रेया घोषाल की आवाज में आप सुन रहे हैं तो एक बहुत ही प्यारा संगीत हिमेश रेशमिया का संगीत और शब्बीर अहमद के थे बोल।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
0: PM हो चुके हैं दोस्तों, आरजे अंकित आपके साथ और शो चल रहा है तीन का तड़का आपके अपने चैनल पर यानी 107 FM रेनबो पर रहने वाला हूँ 4 बजे तक आपके साथ और 4 बजे तक धमाकेदार ट्रैक्स है, ये मेरा वादा है आप लोगों के लिए। और दोस्तों बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम की ओर।
2: परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति, सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति।
0: आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY भारत सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है जो पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त कैशलेस इलाज प्रदान करती है। ये योजना देश भर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में गंभीर और जटिल बीमारियों के इलाज को कवर करती है। इसकी विशेषता की बात करें दोस्तों तो ये कवरेज सीमा है, प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा यानी सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के लिए, पैनल में शामिल किसी भी अस्पताल में इलाज के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता, 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना में शामिल किया गया है चाहे उनकी आय कुछ भी हो। आप भारत के किसी भी राज्य या जिले में जाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। योजना के लिए अपनी पात्रता जांचने की आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आधिकारिक PMJAY वेबसाइट पर जाएं, अपने नजदीकी पात्र अस्पताल को खोजने के लिए PMJAY हॉस्पिटल लोकेटर का उपयोग करें, आप अपने क्षेत्र के नजदीक जन सेवा केंद्र यानी CSC ई मित्र केंद्र या किसी भी सूचीबद्ध सरकारी अस्पताल में जाकर भी अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं।
2: परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति, सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति।

फिल्म जोड़ी ब्रेकर से श्रद्धा पंडित और शादे फरीदी लेकर आए थे ट्रैक सलीम सुलेमान का कम्बोजिशन और शब्बीर अहमद के बोल। दोस्तों हमें गोल खाना पसंद नहीं और हमें यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। रोमेरो जी हाँ अर्जेंटीना के गोलकीपर ये कहते हैं कि डिफेंडर क्रिस्टियन रोमेरो ने कहा कि हमें गोल खाना पसंद नहीं और हमें निश्चित रूप से इस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। और दोस्तों देखते ही देखते पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के आखिरी पायदान पर और आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत प्यारी सी आयुष्मान खुराना की आवाज में।

फिल्म विकी डोनर से दोस्तों आयुष्मान खुराना की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये ट्रैक। आयुष्मान खुराना रोचक कोहली का कंपोजिशन और लिरिसिस्ट भी दोस्तों थे आयुष्मान खुराना और रोचक कोहली। और दोस्तों 16 वर्ष की छात्रा संभावी ने भट्ट ने बढ़ाया बंगाल का मान। जी हाँ, कोलकाता की 21 स्कूल की 16 वर्षीय छात्रा संभावी एस भट्ट ने गोवा में आयोजित 9वीं नेशनल फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करके पश्चिम बंगाल का मान बढ़ाया है। पश्चिम बंगाल की प्रतिनिधित्व करते हुए संभावी ने असाधारण प्रतिभा और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। उन्होंने 10 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीतकर चैंपियनशिप को बरकरार रखा। और दोस्तों ये तो थी खबर आपके लिए, और हम बढ़ेंगे कार्यक्रम के एक आखिरी ट्रैक की तरफ। आइए सुन लेते हैं कार्यक्रम का एक आखिरी ट्रैक, बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है आप लोगों के लिए।

0: फिल्म जन्नत टू से दोस्तों आप सुन रहे थे केके की आवाज में। ये बहुत ही प्यारा सा ट्रैक प्रीतम ने सजाया था संगीत से और बोल लिखे थे सैयद कादरी ने।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का 107 FM रेनबो पर। तीन का तड़का 107 FM रेनबो पर।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे तीन का तड़का और आपके साथ आपका दोस्त था आरजे अंकित दोस्तों। लेकिन अब वक्त हो गया है कि मैं आप लोगों से ना एक छोटी सी इजाजत ले लूं, क्योंकि छोटी सी इसलिए क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों से फिर एफएम रेनबो पर मिलूंगा ठीक 7:02 पर यहाँ पर। जी हाँ, आऊँगा वापस से आप लोगों के साथ, ये तो मेरा पक्का सा वादा है। और पक्का वादा ये भी है दोस्तों कि आपके लिए एंटरटेनमेंट का जो है ना भरपूर यहाँ पे पिटारा यहाँ पे खुले हुए एफएम रेनबो, क्योंकि इसके बाद अगला कार्यक्रम भी आप लोगों के लिए आने वाला जो होगा एंटरटेनमेंट से भरपूर, ये भी प्रॉमिस है आपके लिए। और अगर आप मेरा कार्यक्रम फिर से सुनना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं एफएम गोल्ड पर, जहां पर मैं जुड़ूंगा आप लोगों से 5:15 पर। तब तक के लिए थोड़ी की इजाजत और अपना ध्यान रखिए, चाय पानी पीजिए, नाश्ता करिए। चलिए मिलते हैं जल्दी से फिर।

गुड इवनिंग, नमस्कार, कैमन आचेन? हाय, दिस इज आरजे अंकित और आप ट्यून कर चुके हैं एक बार फिर से 107 एफएम रेनबो पर। आरजे अंकित हाजिर है कार्यक्रम लेके छायालोक, और आज छायालोक के अंतर्गत खूबसूरत यादों की बारात। दोस्तों, शाम

कि इस खूबसूरत सफर में आपका दिल से स्वागत है। हर शुक्रवार दोस्तों बॉलीवुड के लिए बेहद खास होता है, जैसे कि लिए हमारे लिए संडे बहुत खास होता है, बॉलीवुड के लिए शुक्रवार काफी खास होता है, क्योंकि इसी दिन बड़े पर्दे पर नई कहानियां, नए किरदार और नए गाने हमारे दिलों में जगह बनाने आते हैं। तो आज की यादों की बारात में हम वक्त की गलियों में लौटेंगे और याद करेंगे उन शानदार फिल्मों को जो इसी वीकेंड अलग अलग सालों में रिलीज हुई और आज भी हमारे यादों में जिंदा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी फिल्म से जिसने दोस्ती, प्यार और जिंदगी जीने का नया अंदाज सिखाया।

फिल्म कॉकटेल 2 से दोस्तों आप सुन रहे थे शिल्पा राव R1 और विश की आवाज में, ट्रैक प्रीतम चक्रवर्ती का, संगीत अमिताभ भट्टाचार्य के बोल। साल 2011 जब तीन दोस्तों की स्पेन यात्रा ने करोड़ों लोगों को अपनी जिंदगी खोलकर जीने की प्रेरणा दी। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि जिंदगी का एक खूबसूरत एहसास बन गई। आइए दोस्तों सुनते हैं इसी फिल्म का एक जोशीला गीत। और अगर दोस्तों आपको भी कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में पता है जो इस वीकेंड रिलीज हुई हो पिछले कुछ वर्षों में, तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 2213-1341 पर।

फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से दोस्तों सुन रहे थे विशाल ददलानी की आवाज में, यश राज, शंकर एहसान लॉय का कंपोजिशन, जावेद अख्तर के बोल। अब चलते हैं साल 2006 की ओर, एक फिल्म जिसने हर युवा के दिल में दोस्ती और प्यार की नई परिभाषा लिखी। आमिर खान की रंग दे बसंती भले गणतंत्र दिवस के आसपास रिलीज हुई थी, लेकिन इसकी लोकप्रियता महीनों तक सिनेमा घरों में बनी रही थी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये ट्रैक।

फिल्म रंग दे बसंती से दोस्तों आप सुन रहे थे ए आर रहमान और नरेश अय्यर की आवाज में। ट्रैक ए आर रहमान का कंपोजिशन प्रसून जोशी के बोल। 7:17 PM हो चुका है दोस्तों, और जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो सेट ऑन किया है 107 FM ट्यून किया, उन्हें बता दो कि दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है छायलोक के अंतर्गत। हम आज कार्यक्रम कर रहे हैं यादों की बारात में, जहां पर मैं बात कर रहा हूं इसी वीकेंड अलग अलग सालों में रिलीज हुई कुछ बॉलीवुड फिल्मों के बारे में। और अगर आपके जहन में भी आपको भी कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में पता है या याद आ रहा है जो इसी वीकेंड रिलीज हुई अलग अलग सालों में, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 2213-1341। अब बात एक ऐसी फिल्म की जिसने राजकुमार राव को बिल्कुल अलग पहचान दी। साल 2017 में आई ये फिल्म छोटे शहर की कहानी थी, लेकिन भावनाएं हर दिल की थी। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बरेली की बर्फी के बारे में।

फिल्म बरेली की बर्फी से दोस्तों देव नेगी, पवनी पांडे और श्रद्धा पंडित लेकर आई थी ये गीत तनिष्क बख्शी का संगीत शब्बीर अहमद की बोल। साल 2015 सलमान खान की फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस के साथ साथ लोगों के दिल भी जीत लिए। बजरंगी और मुन्नी की दोस्ती आज भी लोगों की आंखें नम कर देती। आइए बजरंगी भाईजान से सुनते हैं ये रॉकिंग ट्रैक।

फिल्म बजरंगी भाईजान से दोस्तों विशाल ददलानी, नकश अजीज और प्रीतम लेकर आए थे ट्रैक। प्रीतमा का म्यूजिशियन मयूरपुरी के थे बोल, और बीच में दोस्तों थोड़ा सा रैप था बादशाह का। अब दोस्तों थोड़ा सा रोमांस हो जाए। साल 2013, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की जोड़ी ने एक बार फिर जादू बिखेरा। जी हाँ, फिल्म रिलीज हुई थी चेन्नई एक्सप्रेस।

फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से सचिन मई श्रीपदा और गोपी सुंदर लेकर आए थे ये ट्रैक विशाल शेखर का कंपोजिशन अमिताभ भट्टाचार्य के बोल। 7:32 PM हो चुका है दोस्तों, आरजे अंकित आपके साथ शो चल रहा है छायालोक के अंतर्गत दोस्तों यादों की भारत, जहां पर मैं बात कर रहा हूं इसी वीकेंड अलग अलग सालों में रिलीज हुई और

आज भी हमारी यादों में जिंदा उन फिल्मों के बारे में रहूंगा आप लोगों के साथ, मैं यानी आपका दोस्त आरजे अंकित, 8 बजे तक। और दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो बात बताता हूं, कभी कभी कोई फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, वो जिंदगी देखने का नजरिया बदल देती है। ऐसी एक फिल्म थी रॉकस्टार।

फिल्म रॉकस्टार से दोस्तों आप सुन रहे थे मोहित चौहान की आवाज में ये ट्रैक एआर रहमान का कंपोजिशन इरशाद कामिल के बोल। दोस्तों अब याद करते हैं उस फिल्म को जिसने कॉमेडी का मतलब ही बदल दिया। जी हाँ, बात कर रहा हूँ थ्री इडियट्स की। और दोस्तों अगर आपके भी जहन में कोई ऐसी फिल्म है जो इस वीकेंड पिछले कुछ वर्षों में रिलीज हुई है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 2213-1341।

फिल्म थ्री इडियट से दोस्तों शान और शांतनु मोहित्रा की आवाज में आप सुन रहे थे ट्रैक शांतनु मोहित्रा का कंपोजिशन लिरिसिस्ट श्रवणंत किरकिरे। जब रोमांस की बात होती है तो एक फिल्म हमेशा याद आती है, जी हाँ 90s की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

दोस्तों 7:52 PM हो चुका है। आरजे अंकित आपके साथ कार्यक्रम चल रहा है छाया लोग में दोस्तों बात कर रहा हूँ यादों की बारात, और यादों के बारे में दोस्तों कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बात कर रहा हूँ जो इसी वीकेंड पिछले कुछ वर्षों में, पिछले कुछ सालों में रिलीज हुई थी। अब दोस्तों सुनते हैं एक ऐसी फिल्म का गीत जिसने हमें सिखाया कि सपने कभी छोटे नहीं थे। जी हाँ, मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ फिल्म कभी अलविदा ना कहना से। सुनेंगे कभी अलविदा ना कहना से ये गीत, और इस गीत के साथ दोस्तों मैं आपको ले चलूंगा सीधा न्यूज़ रूम में, जहाँ पर आप सुनेंगे 8 बजे से न्यूज़ और 8:02 तक। और इसी गीत के साथ आपका दोस्त अंकित तो ले लेगा इजाज़त और बोलूँगा बाय, गुड नाइट, टेक केयर। लेकिन लेकिन लेकिन दोस्तों एक छोटा सा ट्विस्ट है आज के हमारे इस कार्यक्रम में।

कि 8:02 से यादों की बारात का सिलसिला जारी रहेगा, छायलों का सिलसिला जारी रहेगा 9 बजे तक, क्योंकि 8:02 से आपके साथ जुड़ेंगी आपकी अपनी दोस्त पूनम। जी हाँ, पूनम करेंगे कंटिन्यू इस कार्यक्रम को, और आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं वापस से एफएम रेनबो पर 8:02 पर पूनम के साथ। तो बस कहीं मत जाइए, बने रहिए 107 एफएम रेनबो पर। मिलूंगा बहुत जल्द आप लोगों से यहाँ से।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक।

8:09 आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छायल और पूनम के संग ओनली ऑन 107 दिल से दिल तक। गीत संगीत का ये सफर चलता रहेगा अगले 9 बजे तक, तो बस हमारे साथ यूं ही बने रहिए, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम और श्रवण। आवाजें कुमार शानू और अलका याग्निक और फिल्म का नाम दीवाना। कुमार शानू और अलका याग्निक, इन दोनों की जोड़ी हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास की सबसे प्रतिष्ठित और सफल गायन जोड़ियों में से एक है। 90 के दशक में इन दोनों की आवाजें हर भारतीय घर का हिस्सा बन गई थी और इन्होंने उस दौर के संगीत को परिभाषित किया। बातें और भी हैं, साझा करूंगी, लेकिन उससे पहले इसी जोड़ी का एक खूबसूरत नगमा तो बनता है ना, तो सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए ओनली ऑन 107 दिल से दिल तक।

अनु मलिक का संगीत और कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज और फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। नब्बे का दशक, ये वो समय था जब कुमार शानू और अलका याग्निक की जोड़ी का मतलब ही फिल्म की सफलता की गारंटी होता था। नदीम श्रवण, जतिन ललित और आनंद मिलिंद जैसे संगीत निर्देशकों ने इन दोनों की आवाज का उपयोग करके ब्लॉकबस्टर गानों की एक पूरी चेन तैयार की थी। जहां कुमार शानू की आवाज में एक प्रकार का ठहराव और रूहानी गहराई थी, वहीं अलका याग्निक की आवाज में मासूमियत, चंचलता और भावनाओं की मिठास थी। इन दोनों का तालमेल किसी भी रोमांटिक गीत को यादगार बनाने के लिए पूरा था, ऐसा आप कह सकते हैं। फिलहाल 8:27 और वक्त एक और खूबसूरत नगमे का, सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: कुमार शानू और अलका याग्निक दोनों गायक दर्द भरे और रोमांटिक दोनों तरह के गीतों में भावनाओं को बखूबी पिरोने के लिए जाने जाते थे। इनकी गायकी में बनावट कम और सादगी ज्यादा होती थी जो आम जनता के दिलों को छू लेती थी। फिलहाल 8:43 और वक्त है एक और खूबसूरत नगमे का। सुनते रहिए, साथ रहिए।

8:55। कुमार शानू और अलका याग्निक की जोड़ी की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि दोनों किसी भी तरह की सिचुएशन के लिए गाना गा सकते थे, चाहे वो पहली बार प्यार का एहसास हो, जुदाई का दर्द हो या फिर शादी का जश्न। उनकी गायकी में एक ऐसी सादगी थी जिसे आज भी नई पीढ़ी के श्रोता बड़े चाव से सुनते हैं।

8:56 मिनट और अब पूनम के जाने का समय है एकदम करीब। तो आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन अस्त व्यस्त बिल्कुल मत रहिए। इस आशा के साथ पूनम लेती है विदाई। टाटा बाय बाय।